0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव

0: इस वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल. इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: गणपत कौन है?
1: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: यो यो हनी सिंगर, चलती रहेगी आज सारी रात, दारू तुम बोतलें तैयार कर लो, पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा या

0: समर के साथ सुनते रहिए जानी पहचानी से कुछ अनजान धुने मस्ती गीत माला में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: ऑल हाउसेज आर डार्क अंटिल द मदर वेक्स अप। जी हाँ, सही बात है, हर घर में अंधेरा होता है जब तक माँ सो रही होती है, जब तक माँ नहीं उठती, और माँ के उठते ही उजाले से भर जाता है घर, ऐसे ही होता है ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम छे सिंगापुर सारू छे अखा सिंगापुर मारू छे। एक बार फिर से दोनों बाएं फैलाकर मैं आपका इस्तकबाल कर रहा हूँ मस्ती गीत माला के एक नए एपिसोड में, और आज माँ की बात करेंगे। खलील जिब्रान के इस कोट के साथ आज हम ये शो शुरू कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि आज हम माँ की बात करने वाले हैं। माँ खुद उजाला भर देती है, कितना सच है ये, और उधर दूसरी ओर अपने ही बच्चे के लिए गाती है, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, जैसे जाने कौन से उसके अंधेरों को बच्चे रोशन कर देते हैं। माँ के लिए उसका बच्चा रोशनी का सोर्स है, और बच्चे के लिए उसकी माँ, है ना। तो आज की गीत माला में सबसे पहला गाना आपके लिए यही लेकर आया हूँ, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। देखिए, ये वही गाना है जो मेरे ख्याल से जो हिंदी भाषी लोग हैं उनमें 100 में से 90 मदर्स की फेवरेट लोरी है ये, जिसे गा गा कर माँ बच्चे को गोद में या कांधे पर थपकी देकर सुला देती है। कई दफा माएं बच्चों को ब्लैकमेल करते भी नजर आती हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि तेरे लिए जब तू छोटा था या छोटी थी क्या क्या गाया, और अब देख क्या कर रहा है तू बड़ा होकर, मेरी बात तक नहीं सुनता। और सच मानिए, मैंने कई माओं को ऐसा कहते सुना है, आपने भी सुना होगा, आपकी मम्मी भी कहती थी। सो इंडियन मदर्स की सबसे पसंदीदा लोरी आपके लिए आज के गीत माला का पहला मोती। और आपको बता दूं कि ये गाना है फिल्म आराधना से। इस गाने को फिल्माया गया है शर्मिला टैगोर पर, और देखिए कोइंसिडेंस, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वो असल में भी माँ बनने वाली थी, तो एकदम रियल वाला इफेक्ट आया इस गाने में। वो इमोशंस उनके चेहरे पर साफ नजर आते हैं जो एक माँ के इमोशंस होते हैं, बहुत खूबसूरत। फिल्म का ये रोल देखिए, पहले अपर्णा सेन और आशा पारेख जी को ऑफर किया गया था, पर दोनों इसलिए राजी नहीं हुई क्योंकि फिल्म के सेकेंड हाफ में उन्हें हीरो की माँ का रोल करना था, और ये उन्हें कतई नागवार गुजरा। बहरहाल आइए आपको सुना देते हैं फिल्म आराधना से ये वाला गाना, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, और साथ में फिल्म अमर प्रेम से बड़ा नटखट है ये किशन कन्हैया का करे यशोदा मैया। दोनों ही गाने शर्मिला टैगोर जी पर पिक्चराइज, लता मंगेशकर का स्वर, आनंद बख्शी के बोल, और संगीत बर्मन जी, सचिन देव बर्मन जी, और पंचम यानी कि आरडी बर्मन का म्यूजिक। सुनिए, लुत्फ उठाइए और वापस लौट कर आइए, मस्ती गीत माला शुरू हो चुका है आज। माँ तुझे सलाम।

0: मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे।
1: To the world, you may just be one person.
0: पहला तेरी याद फिर राम आवे।
1: But to that one person, you are the entire world.
0: मेरी माँ मेरा रब मेरी माँ मेरा राम।
1: Radio Masti 24/7 wishes all the amazing mothers a very happy Mother's Day.

0: रेडियो मस्ती पर आप समर के साथ सुन रहे हैं मस्ती गीत माला।
1: सामने ये कौन आया।
2: आपने सुना ही होगा जो रूमी ने कहा था, द वुंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। जख्म एक ऐसी जगह होता है जहां से रोशनी आपके भीतर प्रवेश करती है। रूमी का ये कहना आनंद बख्शी साहब के ऊपर कितना सही बैठता है। उन्होंने 10 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया था, फिर 17 साल की उम्र में अपनी मातृभूमि को। इन्हीं जख्मों से किसी कविता ने उनके भीतर रोशनी की तरह प्रवेश किया और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर गीतकार के तौर पर अपना भाग्य आजमाया, क्योंकि वो बनने तो आए थे सिंगर, लेकिन मजबूरी के चलते उन्होंने गीत लिखने शुरू किए और गीतकार बन गए, मशहूर गीतकार। माँ के लिए इतने गाने लिखे कि माँ का आशीष हमेशा उनके साथ बना रहा। गीतमाला के एक और एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि आनंद बख्शी साहब ने किस तरह से और कितने गाने माँ पर ही लिखे हैं। दो तो मैं आपको सुना ही चुका हूँ। उन्होंने जब लिखा, मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा, जैसे अपनी ही कहानी कह दी उस गीत में। माँ के गुजर जाने के बाद उन्हें दूसरी माँ भी मिली। जी हाँ, उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, मगर नई माँ से वैसा प्यार, वैसा वाला रिश्ता नहीं रहा। जीवन भर उनका ये दुख गया नहीं। उनका लिखा गाना साल 1966 में आई फिल्म छोटा भाई में था, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले। फिल्म खलनायक में ओ माँ तुझे सलाम, और जिस गाने का जिक्र मैं करना चाहता हूँ वह फिल्म राजा और रंक का, तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ प्यारी माँ। ये गाना सुनकर किसकी आंखें न भराएंगी, किसको अपनी माँ का प्यार न याद आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। उनकी कमी उनको खलती रही, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को भी ये बात हमेशा सिखाई कि माँ का सम्मान करना चाहिए। एक वाकया उनके सबसे छोटे बेटे ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि उन्होंने एक दफा अपनी प्लेट में एक अंडा छोड़ दिया था ब्रेकफास्ट के बाद, उसे खाया नहीं और उठ गए। तब आनंद बख्शी साहब ने उनसे कहा था कि क्या तुम जानते हो इस अंडे की कीमत क्या है? जब हमारे घर में पैसे नहीं थे, तंगी थी, तब तुम्हारी माँ एक अंडे के 4 टुकड़े करके सब बच्चों को खिलाती थी, खुद कभी नहीं खाती थी। यह है इस अंडे की कीमत। इस बात को उनके बेटे समझ गए और ताउम्र इस बात का ख्याल रखा। माँ ने उनके लिए जो त्याग किया वो थी उस अंडे की कीमत। सच कहूं तो ऐसा लगता है कि आनंद बख्शी जी ना होते तो बॉलीवुड को माँ पर इतने बेहतरीन गाने नहीं मिल पाते। गीतमाला में उनका लिखा गाना एक बार फिर आपकी नजर कर रहा हूँ, राजा और रंक से, तो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। इन गानों का लुत्फ उठाइए और वापस लौट कर आइए। मैं हूँ समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: तू कितनी अच्छी है,
0: ये वो है जो सबकी जगह ले सकती है।
2: तू कितनी भोली है,
0: और ये वो ही है जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता।
2: प्यारी प्यारी है,
0: Radio Musti 24/7 wishes all the amazing mothers a very happy Mother's Day.

0: समर के साथ सुनते रहिए जानी पहचानी से कुछ अनजान धुने मस्ती गीत माला में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: एक चिड़िया के बच्चे चार घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाते उत्तर से दक्षिण को आते। घर एक बच्चा लौट कर ना पाया तो चिड़िया क्या करेगी? चिड़िया चिड़े का कांधा आंसुओं से तर कर देगी मगर दिशाओं को भेजने नहीं देगी। चिड़िया की कहानी ही माँ की कहानी है। माँ और बच्चे की कहानी ऐसी लव स्टोरी है जिसमें कोई ट्रायंगल नहीं होता, कोई ट्विस्ट नहीं है, कभी बदलती नहीं है। माँ को सलाम करता हुआ मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ। मैं समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे मस्ती गीत माला। माँ चारों दिशाओं के लिए भी किसी दिशा सूचक यंत्र का काम करते, कंपास की तरह होते ताकि बच्चे रास्ता भटक न जाए। माँ सिंबाद सेलर का जहाज है जो तूफान से बेपरवाह बस चलता रहे और बच्चा जहाज के एक छोर पर पैर लटकाए हुए लहरों से बेखबर समंदर को खामोश झील सा महसूस करे और सुकून से मछली पकड़ने का लुत्फ उठाए। यहाँ एक ऐसी ही माँ का जिक्र लाजमी है, वो माँ जो ब्रिटिश इंडिया के लुधियाना में रहती है। नाम है सरदार बेगम, सामंती सोच वाले रईस जागीरदार फजल मोहम्मद की पत्नी। ये सरदार बेगम और कोई नहीं बल्कि हिंदी फिल्मों में गीत रचने वाले गीतकार और उर्दू के बड़े अदीब साहिर लुधियानवी की वालिदा थीं। साहिर के वालिद फजल मोहम्मद की कई पत्नियां थीं। ऊपर से दोनों की सोच अलग थी, दोनों में काफी लड़ाइयां होती थीं। साहिर के पिता ने उनको अपना बेटा कभी नहीं माना लेकिन इस अन्याय के खिलाफ साहिर की माँ डट कर खड़ी रही, पिता के ऊपर अदालती मुकदमा दायर कर दिया। साहिर मात्र 13 साल के थे जब वो अपनी माँ के साथ अदालत में पिता के विरुद्ध खड़े हुए। पिता ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली पर माँ थी ना साथ। साहिर को बचाने के लिए उन्होंने गार्ड रखे, सब जेवर बेच डाले, मुफलिसी के घने साए में रहे पर अपने बेटे की जान बचा ली उन्होंने। साहिर को बहुत सेंसिटिव शायर और गीतकार भी बना दिया उनकी इस परवरिश ने। जमाने में हर दौर में माँ वैसी ही रही है, मजबूत। माँ का कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं। मैं आपको एक नए जमाने का गाना सुना देता हूँ, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा फ्रॉम दस विदानिया, जिसे लिखा और गाया कैलाश खेर ने। मैं उन समर रेडियो 24/7 लाइव पर सुना रहा हूँ आपको मस्ती गीत माला में माँ को समर्पित ये गाने।

0: रेडियो मस्ती पर आप समर के साथ सुन रहे हैं मस्ती गीत माला।
1: सामने ये कौन आया
2: आज जी, गीतों के मोती हमने पिरोए हैं इस माला में और सारे के सारे मोती माओ के नाम है जफा। वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं मस्ती गीत माला। बॉलीवुड में माँ के लिए कई गीत रचे गए और मैं उन्हीं में से कुछ आपको याद करा रहा हूँ, कुछ सुना रहा हूँ। जब बॉलीवुड की बात निकली है तो एक और शख्सियत याद हो आती है, वो है संगीतकार और गायक हेमंत कुमार साहब। इंजीनियरिंग की पढ़ाई को वो घर से निकले और हारमोनियम की कीज में कहीं खो गए। पिताजी बड़े खफा हुए इस बात से, नहीं चाहते थे कि हेमंत गायक बने, परंतु उनके साथ माँ खड़ी थी साहब। उन्होंने हेमंत को जाने दिया और अपनी डायरी में लिखा, वो दिन दूर नहीं जब हेमंत के गानों के रिकॉर्ड्स बड़ी बड़ी दुकानों में सचिन देव बर्मन और पंकज मलिक के म्यूजिक रिकॉर्ड्स के साथ रखे जाएंगे। माँ की आस्था का चमत्कार था कि हेमंत दा ने खूब गाने गाए, गवाए और उन रिकॉर्ड्स के लिए खास जगह बना भी ली। आस्था का ये प्रवाह एक तरफा नहीं है, इसे अम्बिलिकल कॉर्ड से साझा करते हैं माँ और संतान। इसकी एक बानगी है मशहूर अभिनेता सुनील दत्त। बिन पिता के इस बच्चे ने देश विभाजन का दर्द झेला, अपनी जगह अपना घर सब कुछ छूट गया, माँ साथ रही बस। माँ ने कहा, आंखों में नरमी रखो मगर जिंदगी की कड़ाई के लिए तैयार रहो, पढ़ाई पूरी करो। फिर क्या था, माँ की इजाजत से वो बॉम्बे चले आए, पढ़ाई और नौकरी दोनों की। रेडियो सैलून में काम करने के दौरान वो फिल्मों की शूटिंग्स में जाया करते थे, इंटरव्यू किया करते थे कलाकारों के, फिल्मी कलाकारों के। यहीं पर निर्देशक रमेश सहगल ने उन्हें एक फिल्म ऑफर कर दी। सुनील दत्त ने हाँ कर दी, स्क्रीन टेस्ट हो गया। सुनील दत्त के पास कुछ दिन बाद बुलावा आया कि बताओ कब से शूटिंग शुरू करें। तो पता सुनील दत्त साहब ने क्या जवाब दिया, बताऊंगा। नहीं, सुनील दत्त साहब ने नहीं कहा था, सुनील दत्त साहब ने क्या कहा था वो मैं बताऊंगा गीत माला के अगले मोती।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: Mom by luck, friend by choice. She's your hero, your mentor, personal chef, driver, etc. But perhaps most importantly of all, she's the one that's always got your back. Radio Masi 24/7 wishes all the amazing mothers a very happy Mother's Day.

0: समर के साथ सुनते रहिए, जानी पहचानी से कुछ अनजान धुने मस्ती गीत माला में, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: एक बार फिर से ब्रेक के इस बार आप सभी का इस्तकबाल, स्वागत, वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको सुनील दत्त साहब की बात बता रहा था कि उन्हें एक फिल्म ऑफर की गई बॉम्बे में और उन्होंने भी फिल्म के लिए हाँ कर दी, स्क्रीन टेस्ट पास कर लिया पर शूटिंग के लिए नहीं पहुंचे। रमेश सहगल साहब जो फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने सुनील दत्त साहब से पूछा कि भाई शूटिंग कब से शुरू करें। इस पर सुनील दत्त साहब तपाक से बोले, अरे पहले मुझे पढ़ाई पूरी करने दीजिए क्योंकि माँ ने कहा है। हाँ जी, माँ का आज्ञाकारी बेटा, माँ ने जो कहा था वो मानना ही था। रमेश सहगल साहब खुश हो गए, बोले मैं इंतजार करूंगा। ठीक एक साल बाद रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई, यानी सुनील दत्त साहब की पहली फिल्म आई प्लेटफॉर्म। माँ की बात भी मान ली, अपनी मंजिल की ओर भी बढ़े चले। पढ़ाई से एक और बात याद आ गई, आपने पिकासो का नाम तो सुना ही होगा। अरे मशहूर स्पेनिश चित्रकार पाब्लो पिकासो, उन्होंने एक बार कहा था कि मैंने माँ का कहना नहीं माना, चित्रकार बना और पिकासो बनकर तनावग्रस्त रहा जबकि माँ नहीं चाहती थी। उनको विश्वास था कि अगर पाब्लो सैनिक बनेंगे तो जनरल बनेंगे, साधु बनेंगे तो पोप भी बनेंगे। सच मानिए, यकीनन माँ का विश्वास सबसे ऊपर होता है। तो चलिए आपको एक गाना जो अब मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो है फ्रॉम सीक्रेट सुपरस्टार, मेरी प्यारी अम्मी। जब ये फिल्म बन रही थी तो दूसरा गाना जो लोगों के लिए रिलीज हुआ था वो यही था। गाना जो हर बच्चे और माँ के कनेक्शन को दिखाता है, कैसे माँ बच्चों के लिए अपनी छोटी छोटी सी खुशियां भी कुर्बान कर देती है, किसी से भी लड़ भिड़ सकती है अगर बात उसके अपने बच्चे की हो तो। माँ और बच्चों की बॉन्डिंग को दिखाता सुनाता ये गाना कौसर मुनीर ने लिखा। फिलहाल बॉलीवुड की अकेली महिला गीतकार हैं वो, और हाँ माँ भी हैं और एक बेटी भी। तो आइए सुन लेते हैं गाना, और आप भी जल्दी से वापस लौट कर आइएगा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं मस्ती गीत माला समर के साथ।

0: समर के साथ सुनते रहिए, जानी पहचानी से कुछ अनजान धुने मस्ती गीत माला में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक, आप हैं मेरे यानी समर के साथ और सुन रहे हैं मस्ती गीत माला। आज की गीत माला बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें माँ है जी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको अगले गाने की ओर ले जाऊं, मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। छोटी सी कहानी है, सुना दूं। एक बार एक बच्चा मेले में अपनी माँ से बिछड़ गया, बहुत रोने लगा। पुलिस वाला वहां आ गया, उसने पूछा क्यों रोते हो भाई। बच्चा बोला मेरी माँ खो गई है, मैं उनके साथ मेला देखने आया था। पुलिस वाले ने मेले में लाउड स्पीकर पर अनाउंस करवा दिया कि भाई किसी का बच्चा खो गया है, माँ को पुकार रहा है, माँ जहाँ कहीं भी हो अपने बच्चे को ले जाएं। अब पुलिस वाले की उंगली पकड़े बच्चा खड़ा था। पुलिस वाले ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ कैसी दिखती है। बच्चा बोला बहुत सुंदर है। रंग कैसा है। एकदम गोरा। पुलिस वाला हर आती जाती खूबसूरत महिला को देख कर कहता यह तुम्हारी माँ। बच्चा कहता इससे भी सुंदर। अच्छा, पुलिस वाला फिर कोई गोरी चिट्टी स्त्री को देख कर कहता यह है तुम्हारी माँ। बच्चा कहता नहीं, इससे भी बहुत सुंदर है। पुलिस वाला परेशान हो गया, उसे लगने लगा कि इसकी माँ कहीं कोई अप्सरा तो नहीं है, धरती की महिलाएं तो इसे अपनी माँ लगी नहीं रही। तभी बच्चे ने पुलिस वाले की उंगली छुड़ाई और एक औरत के पैरों में लिपट गया, मम्मा मम्मा कहने लगा। पुलिस वाले ने देखा साधारण चेहरे मोरे वाली सूती साड़ी, पैरों में हवाई चप्पल पहने एक सांवली सी महिला है, चेहरे पर जिसके चेचक के निशान भी है। बच्चा बोला अंकल ये है मेरी मम्मी। सच ही कहा है किसी ने कि हर बच्चे को अपनी माँ सबसे सुंदर लगती है, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री। बस ये कहानी मुझे प्यारी लगती है, इसलिए सोचा आपको भी सुना देता हूँ। वेल, अभी मैं आपके लिए जो गीत लेकर आया हूँ वो है फिल्म रंग दे बसंती से लुका छिपी बहुत हुई सामने आ जाना। फिल्म का सबसे इमोशनल गाना है ये, जिसे लिखा है प्रसून जोशी जी ने। और प्रसून जोशी जी को पहले फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए आमिर खान साहब ने बोला, और इसके बाद राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो कि फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि इसके गाने भी आप ही लिख दीजिए। हालांकि प्रसून जोशी चाहते नहीं थे डायलॉग भी और गाने भी लिखना, क्योंकि रिपीट हो सकता था ना, पर कॉन्फिडेंस था फिल्म मेकर्स को और उन्होंने उनके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल सही साबित किया। गाना सुना देता हूँ पहले, फिर गाने से जुड़ी कुछ और बात बताऊंगा आपको। थोड़ी लुका छिपी तो बनती है ना आपके और मेरे बीच। समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं मस्ती गीत माला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माँ को कॉल जरूर कीजिएगा।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
3: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
4: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
5: टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
4: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: रेडियो मस्ती पर आप समर के साथ सुन रहे हैं मस्ती गीतमाला।
1: सामने ये कौन आया।
2: वेल वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बताने वाला था लुका छिपी गाने के बारे में कुछ। मैं कौन? मैं हूँ समर। आप सुन रहे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती गीतमाला। तो हुआ यूं कि सोचा गया कि इस गाने को फिल्म में नहीं रखेंगे, शूट नहीं होगा किसी पर, बैकग्राउंड स्कोर की तरह चलाएंगे इसे। बहुत सोचा गया कि कहां और कैसे इस गाने को लाया जाए फिल्म में। तब फिर माधवन के मर जाने वाले सीन पर इसे फिल्माया गया, जब वहीदा जी अपने बेटे को देखती हैं। फिर जो भी सीक्वेंस चलता है आपने जरूर देखा होगा गाना। एक माँ जो अपने बेटे को मरा हुआ देख ले तो क्या सोचती है कि बच्चा कोई लुका छिपी का खेल उसके साथ खेल रहा है, जल्दी से वो उसे ढूंढ लेगी। सो इस तरह ये गीत लिखा गया, आज एक यादगार गीत बन गया है ये। तो मैं जब भी ये गाना सुनता हूँ ना, मुझे लगता है कि एक स्त्री माँ बनने के बाद इस हद तक माँ बन जाती है कि माँ को उलट पलट कर देखो तब भी वो माँ ही रहती है। माँ कैसे लिखते हैं, माँ के ऊपर एक चंद्र बिंदु। अब गौर से देखिएगा माँ के चंद्र बिंदु को। आधे चांद सी माँ है जिसने नन्हे से बिंदु यानी अपने अंश को सुकून से अपने अंक में, अपनी गोद में भर रखा है। कितनी खूबसूरत है इस लफ्ज माँ की ये छवि। उसके मायने कितने बड़े होते हैं इसे समझ पाना बेहद मुश्किल है। विज्ञान की भाषा में कहें तो अपनी संतान के ऊपर मंडराते ग्रीन हाउस गैस के खतरे में ऑक्सीजन की बयार बनकर बहती है वो ओजोन छिद्र से आती हर तरह की पराबैंगनी किरणों के लिए एंटी यूवी शील्ड है। वैसे इसी तरह की एक बात कहता है गीत है माँ की परछाई, फिल्म हेलीकॉप्टर रीला से, जिसमें एक सिंगल मदर का किरदार निभाती काजोल नजर आती है। बहुत सी माओं पर ये गाना बहुत ही फिट बैठता है। आइए सुन लेते हैं।

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: All the times we forgot to say thank you, for all the special little things she did, for all the words which sometimes goes unspoken.

0: समर के साथ सुनते रहिए जानी पहचानी से कुछ अनजान धुने मस्ती गीत माला में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक, नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं मस्ती गीत माला। हर माँ से आशीर्वाद की चाह रखता हुआ मैं समर। एक और फिल्मी माँ की बात यहाँ याद आती है। वैसे वो फिल्मी नहीं है, पर उन्होंने भारतीय फिल्मों को एक न बुझने वाला सितारा जरूर दिया है। कुछ इस तरह ये अफसाना है कि उन्होंने महात्मा गांधी को एक खत लिखा। बापू, मैं भी आजादी के आंदोलन में शामिल होना चाहती हूँ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, परिवार है, पर मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। खत बापू को मिला, जवाब में लिखा, नहीं नहीं, तुम घर परिवार मत छोड़ो, अपने बच्चे को अच्छे से परवरिश दो, अच्छा इंसान बनाओ ताकि वो देश की सेवा कर सके। मैंगलोर से खत लिखने वाली जानते हैं कौन थी? ये थी वसंती पादुकोण। इस खत में जिस बच्चे का जिक्र है वो वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण थे। माँ की बेहतरीन परवरिश का नतीजा था कि भारतीय सिनेमा का एक अद्भुत टेक्नीशियन हमें मिला। एक जीता जागता कैमरा, एकदम क्लोज शॉट लेता हुआ, जिसके लेंस 75 और 100 mm के हैं, सामने वाले की आंखों के भावों को लगातार टोहता हुआ, छूता हुआ, उन्हें रुपहले पर्दे पर उतारता हुआ। उन्होंने सिल्वर स्क्रीन को दिया सबसे गोल्डन ख्वाब, उन्होंने दिया तारीकी और उजाले का अनूठा शोमैन गुरुदत्त। जी हाँ, गुरुदत्त पर माँ का इतना प्रभाव रहा कि वो अपनी फिल्मों के राइटर भी माँ से पूछकर तय किया करते थे। अबरार अलवी, जो उनके बहुत अच्छे मित्र बने आगे चलकर, उन्हें भी माँ ने ही पास किया था। माँ का हर कहा मानते थे गुरुदत्त। बस इस दुनिया को औरों के हवाले करते हुए माँ के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। खैर, आइए थोड़ा सा मन को बदलते हैं, फिल्म दोस्ताना का गाना गुनगुनाते हैं। आज का हमारा अगला मोती है ये, गीत माला को पूरा करता हुआ। आइए इसके बाद वापस लौट कर कुछ और बातें करेंगे, और कुछ कहना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर बिंदास कहें।

जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। एक माँ का प्यार ही तो है कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, उसका प्यार कभी कम नहीं होता। रेडियो मस्ती 24/7 विशेस ऑल द अमेजिंग मदर्स अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

0: रेडियो मस्ती पर आप समर के साथ सुन रहे हैं मस्ती गीत माला।
1: सामने ये कौन आया।
2: सुस्वागतम, वेलकम बैक, खुशामदीद इस्तकबाल आप सभी का। एक कहानी और यहाँ याद आ रही है मुझे। एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे के लिए एक बड़ा झूठ भी बोल देती है, क्योंकि उसका बच्चा इस बात से दुखी है कि उसके खरगोश के दो छौने किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाते हैं। जानवर घर में घुस आता है क्योंकि माँ ने ठीक से दरवाजा नहीं लगाया था। माँ अपने आप को इसका अपराधी मानती है, लेकिन बच्चे को दुख न हो इस वास्ते एक अजब कहानी बुनती है। कहती है कि ये सारा खेल देवताओं के शैतान बच्चों का है, जो खरगोश के नन्हे कोमल छौनों को इस तरह पत्थर के ढेले में बदल देते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि बच्चा उनकी बात मान लेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि उनका बेटा उनसे बहुत प्यार करता था, और अगर दुनिया में किसी पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था तो वो खुद थी अम्मा। सच, माँ विश्वास है, अटूट उम्मीद है। एक माँ ने अपने बच्चे के घर से कहीं दूर जाने की बात को अपनी डायरी में लिखा। तारीख थी 24 अप्रैल 1950। माँ ने दुआएं उनके साथ भेज दी। माँ ने अपनी उम्मीद लिखी थी डायरी में, जिसे बेटे ने पूरा भी किया। माँ थी रविशंकर शर्मा की। बेटा जो घर छोड़कर निकला वो बन गया मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर रवि। हाँ जी, रविशंकर शर्मा इनका पूरा नाम था। रवि साहब का पूरा परिवार उनके जन्म से पहले ही हरियाणा से दिल्ली आकर शिफ्ट हो गया था। रवि का जन्म दिल्ली में ही हुआ। वो वहीं नगर निगम के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, फिर दरियागंज के हाई स्कूल में पढ़े। वैसे ये सच है कि हर बड़ा कलाकार अपनी कला की तरफ कदम बढ़ा ही लेता है। जिंदगी कई इम्तिहान लेती है, उन सबको वो पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ये बात अलग है कि पढ़ाई में वो कुछ खास नहीं कर पाए। ऐसा ही हुआ, रवि भी 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए। फिर उन्होंने इलेक्ट्रीशियन का काम करना सीखा, और अच्छी बात ये थी कि उन्होंने हारमोनियम भी इस बीच सीखना शुरू कर दिया था। हारमोनियम उनके साथ अंत तक रहा। जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने हारमोनियम के बजाय कीबोर्ड यूज करना शुरू कर दिया था, लेकिन हारमोनियम से उन्होंने कई धुनें रची। खैर, दिल्ली में रहते हुए उन्होंने 5 साल तक पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में सर्विस की। बीच बीच में कभी कभी ऑल इंडिया रेडियो में गाना शुरू कर दिया। फिर 1950 में मुंबई आ गए, सिर्फ माँ की दुआओं के साथ, और खूब नाम कमाया उन्होंने। चलिए, एक और मोती जो हम अपने गीतमाला में पिरो रहे हैं वो है माँ का फोन आया। आपने मम्मी को फोन किया कि नहीं? कीजिएगा। इन गानों के बाद फिर से मिल लीजिएगा यहीं पर। आज की आखिरी मुलाकात करेंगे।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सम शोज डोंट जस्ट प्ले, दे स्टे विद यू, एंड व्हेन आवर लिसनर्स आस्क फॉर मोर, वी ब्रिंग देम बैक। Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: समर के साथ सुनते रहिए जानी पहचानी से कुछ अनजान धुने मस्ती गीत माला में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं मस्ती गीत माला। माँ, माँ पर और क्या कहें, क्योंकि बात गीतों की है, सुनो और धुनों की है, तो उसी अंदाज में कुछ कहकर आज की गीत माला को विराम देना चाहूंगा। माँ एक ऐसी धुन है जिसने कई और धुनों के साथ गुपचुप अपना सुर मिलाया है। छोटी सी कुटिया में बैठे अंधे साधु के कृष्ण भजन के साथ मध्यम सुर में कोई महीन आवाज सी सुनाई पड़ रही है, वो माँ है। कुम्हारिन मटकी को बजाकर देखते, कहीं ना कहीं ये धुन उसे पकड़ में आ जाती होगी। फलवाला अच्छे तरबूज की खोज के लिए कान के पास लगाकर यही धुन सुनता होगा। नेल पेंट सुखाती लड़की भी फूंक और रसोई के सामानों की लिस्ट बनाती स्त्री के जहन में यही धुन होती होगी। ये वही धुन है जो शिव गा रहे हैं, कई हजार बरसों से सती से खफा मगर विरह में व्यथित शिव। ये यरूशलम की उस छोटी पहाड़ी गोलगोथा से आती है जिसकी छाती पर सलीब पर टंगे यीशु का खून बहा था। केमिस्ट्री लैब में ब्यूरेट से बीकर में टपकती बूंदें यही गाती हैं। आर्कमिडीज कितनी भी कठिन खोज कर रहा हो, गुनगुनाता तो यही है। परागण के लिए उड़ चले पराग कणों का सामूहिक गीत है, भीनी आवाज वो माँ की आवाज है। सुनना कभी बहुत ध्यान मग्न होकर, कंप्यूटर पर टाइप करते हुए, दाल और चावल खाते हुए, टेबल लैंप की झुकी गर्दन से निकलती रोशनी के घेरे में एक ही धुन, माँ, माँ और सिर्फ माँ। उजाले से शो शुरू हुआ था, उजाले पर ही इसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। फिलहाल जाने का वक्त है, इजाजत दीजिए, माँ के लिए गाने प्ले कर रहा हूँ। आप सुनिए, माँ को याद कीजिए, प्यार कीजिए। आ रहा है मायरी तेरी चुनरिया लहराई, और जा रहा है आपका समर। जाते जाते कुछ वादे चाहता है कि आप रखिएगा अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएगा, और कुछ ऐसा कर जाएगा कि लोग आपको याद रखें। याद मुझे भी कीजिएगा अपनी दुआओं में। मैं मिलूंगा आपसे यहीं पर, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टेक केयर।

जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। एक माँ का प्यार ही तो है कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, उसका प्यार कभी कम नहीं होता। रेडियो मस्ती 24/7 विशेस ऑल द अमेजिंग मदर्स अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
1: Ladies and gentlemen, let me tell you the story of Mr. Sutro. 1, 2, 3, start.

0: डिफरेंटली है वायर्ड, कभी होती ही नहीं है टायर्ड।
1: मेरी माँ
0: गलती के रथ पर अगर हो सवार, शी टेक्स मंजुलिका का अवतार।
1: मेरी माँ
0: बेवजह हर घड़ी प्यार जो लुटाए, चोट बच्चे को लगे तो आह की आवाज उसकी जुबान से आए।
1: मेरी माँ
0: फ्रेंड फिलोसोफर शेफ बोलो या गाइड, ऑल एवर शी शुड गेट इज अ बिग वाइट स्माइल।
2: आई लव यू मम्मा।
0: Radio Masti 24/7 wishes and salutes all the mothers. Happy Mother's Day!

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

न मेरे लिए लिखते, न दुनिया के लिए लिखते, न मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं तो तेरे लिए लिखते।

शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: वो है जो सबकी जगह ले सकती है,
1: तो कितनी भोली है।
0: और ये वो ही है जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता।
1: प्यारी प्यारी है।
0: Radio Musti 24/7 wishes all the amazing mothers a very happy Mother's Day.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
1: It's the best of Bollywood playing on Radio Mercy 24/7 Live. Have a musty bhara weekend.

0: mom by luck, friend by choice. She's your hero, your mentor, personal chef, driver, etc. But perhaps most importantly of all, she's the one that's always got your back. Radio Masi 24/7 wishes all the amazing mothers a very happy Mother's Day.
1: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस
2: का। अरे अरे, अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
3: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
4: टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
3: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
5: छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो यार, जाने। हाँ मम्मी, घर जाना है, मम्मी घर जाना है, फ्राइडे मनाना, छोड़ दो मुझे।
6: ये पुरानी फिल्मों की तरह भगवान के लिए छोड़ दो। क्यों छोड़ दें भाई, क्यों, आखिर क्यों छोड़ दें।
4: Musty Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week Full on Renuka Style.
6: I've suddenly started feeling like बाबू भाई, ये बाबू भाई का स्टाइल है। होता तो मेरा स्टाइल था मस्ती टॉप चार्ट्स पर, लेकिन हाँ, कब्जे में है, बुलबुल मेरे साथ है। रेडियो मस्ती 24/7, सही जगह आए हैं आप, बिल्कुल मस्ती टॉप चार्ट से। और इस हफ्ते भी इस बुलबुल को कैद में रखा गया है। क्यों बुलबुल, बोलना।
7: ये ना, इन्होंने लास्ट वाले में ना इन्होंने फिगर आउट कर दिया कि एक, मतलब मैं ना बॉस का वीटो पावर यूज कर सकती हूँ। ये तो मतलब ऐसा लगा उनकी सडन डिस्कवरी हो गई। अब जैसे ही मुझे फ्राइडे वाले दिन जाते हुए देखती, पता नहीं इनके अंदर क्या हो जाता है कि अंतरा बैठना, क्या यार फ्राइडे की शाम मुझे ऐसे अकेला छोड़ के जाएगी, ऐसे ऐसे।
6: हाँ, तो जहाँ कुछ और काम नहीं आता, वहाँ इमोशंस काम आते हैं अंतरा के साथ में। ऑन रेडियो मस्ती गाइस, दिस इज रेणुका विद यू, एंड ऑफ कोर्स साथ ही में अंतरा है मस्ती टॉप चार्ट से। वेल, सच बताऊं तो आज इसके यहाँ रहने का एक रीजन है, खास रीजन है। लास्ट टाइम आपको याद है जब ये हमारे साथ में आई थी, तो इसने क्या इल्जाम लगाए थे, तुम्हें याद है अंतरा क्या इल्जाम थे तुम्हारे?
7: हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रही थी कि मतलब नंबर वन गाना चेंज करो यार। हाँ। क्या चल रहा है, मतलब मेरी मर्जी का नंबर वन होना चाहिए, जब मेरे को रोक के मेरे से करवा रहे हो शो, तो फिर मेरी मर्जी का भी तो कुछ चलना चाहिए।
6: बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रिक क्वेश्चन मेरा साथ में ये था कि अंतरा, क्या आपको कैसा लगता है कि ये जो 20 गाने हैं, उसमें से कितने गाने आपको लगता है कि यहाँ नहीं होने चाहिए? तो इसने उस पर बोला था 5 से भी ज्यादा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आज इसको पकड़ के इसी की प्लेलिस्ट से टॉप 20 बनवाते हैं और देखते हैं कि कितने गाने निकलते हैं। ऑलराइट, तो इसने जबरदस्ती कहीं कहीं से, वो कहते हैं ना, खुरेद खुरेद के नए नए गाने लेकर आई है। तो चलिए जी, नंबर 20 पर शुरू कर रहे हैं हम इस गाने के साथ। कुड़ी, एक नहीं दो दो यहाँ हॉट शॉट लग रही है, लेकिन ब्याह करने का किसी का मूड नहीं है। क्यों अंतरा, है क्या?
7: बिल्कुल, आपको जान के बहुत खुशी होगी, नंबर 20 पे एकदम नई नई एंट्री हो रही है, ऑल थैंक्स टू मी। इस गाने को एंजॉय करिए, एंजॉय।
6: शी इग्नोर्ड माय क्वेश्चन। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्टे ट्यून्ड।
8: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 20।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। बॉलीवुड फ्लैशबैक।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: 24/7 स्वागत आपका। जी हाँ बिल्कुल, अब ये मेरा शो नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि परमानेंटली इसको हमारा शो बनाया जाए। क्या ख्याल है आप सबका, वैसे रख लें या छोड़ दें?
1: They are fresh, they are hot, they are spicy and they are happening. Join us on Masti Top.
2: मैं तो इनको जानती थी, अभी मेरा दिमाग ऑलरेडी चलने लगा है कि फ्राइडे को इनके सामने आफ्टरनून आना ही नहीं है, इनके सामने पढ़ना ही नहीं है।
0: हमारी टीम मीटिंग भूल गए आप फ्राइडे वाली अंतरा जी? बिल्कुल, हमेशा सुबह के हमारे मस्ती मैडनेस के बाद में थोड़ा ब्रेक लेंगे हम लोग, 2-3 घंटे का, ठीक है?
2: नहीं, हम ब्रेक नहीं लेंगे, हम जुझारू एम्प्लॉय जुझारू, हम बैक टू बैक करेंगे, सारे काम हो जाने चाहिए।
0: तो चलिए इसी के साथ में, क्योंकि मैडम ने लास्ट टाइम चैलेंज करी थी हमारी लिस्ट, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज नए नए यहाँ पर गाने इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। हमेशा की तरह मैं भी करती हूँ, बट एक नई फिल्म, जी हाँ, क्या है ये फिल्म का नाम है? जवानी तो इश्क होना है। व्हाट इज दिस अंतरा, व्हाट इज दिस?
2: दिस इज द सॉन्ग, यू डोंट रिमेम्बर? है जवानी तो इश्क होना है।
0: ये गाना याद है, वो याद है, पर ये फिल्म क्या है? वरुण धवन एंड मृणाल ठाकुर, ये बताओ।
2: यस यस, बट फिल्म का बता रही, लेकिन से आप पे बहुत पाए हुए इस फिल्म में ऑलरेडी। आई थिंक उसी, मतलब प्रमोशन भी उसका उसी हिसाब से हो गया। कोई तो इन्फ्लुएंसर थी, उसने बोला कि मेरे से मेट्रो स्टेशन पे आकर इसके मेकर्स ने मतलब हाथ पैर जोड़े कि अच्छी बातें कर दो इसके लिए। बस जब तक मैंने देखा नहीं, कुछ किया नहीं, तो मैं फालतू में अच्छी बातें क्यों करूं। वरुण धवन रीपोस्टेड, कहते हैं तुम्हें नए वायरल होने के लिए नए फॉलोअर्स मुबारक हो।
0: वेरी गुड,
2: इट वेंट लाइक,
0: हाँ मजे
2: आजकल करते हैं इन्फ्लुएंसर्स। बट द सेम इन्फ्लुएंसर रिप्लाइड ऑन द सेम वरुण धवन का रिपोस्ट कि सर जितने हैं हम बहुत खुश हैं, आपकी ये मूवी प्रमोट करके मुझे कोई नए फॉलोअर्स नहीं मिलने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच।
0: लेकिन आपको पता है कि इन सारी की सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में ये भी सारी की सारी मार्केटिंग प्लानिंग ही होती है, और कई बार पता लगता है कि ये सब चलते ही चलते मतलब चले चला जा रहा है। गाना मरुनीस कमिंग अप नेक्स्ट, गिनी वर्ल्ड सनी 2 के साउंडट्रैक्स। ए खुदा कहाँ जाएं, इतने फेक हो गए दुनिया में लोग, इतने फेक हो गए, कहाँ जाएं हम, क्यों अंतरा, है ना, है ना?
2: बहुत बहुत ही एकदम इतनी सच्ची बात है, हर चीज इनकी एक प्लान लगती है आजकल तो। कुछ भी करते हैं ऐसा शख्स लगता नहीं, इन्होंने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो इनकी पीआर टीम ने स्ट्रेटजी लगाई होगी कि ऐसा करते हैं। अब
0: इंसान के ऊपर से विश्वास उठ गया इंसान का, वेरी सैड।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Trending song number 19.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: पार्टी सारी रात चलेगी जानू, जरा हौले हौले।
3: बिल्कुल चलेगी, क्योंकि जैसे जैसे 7 PM का शो हुआ फुल, वैसे ही पॉपुलर डिमांड पर 3 PM का शो गया खुल। Join the king of impressions, the Sunil Grover, will be live on 25th April at D Marquee, Pasir Ris for a full family entertainment show. What? Grab those tickets right away on Sistic. Wonderful escapades and epic encounters present Sunil Grover live in Singapore. Laughter ka musti worse.
4: It's a Radio Musti partnered event.
5: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
6: Check it out.
7: और इसी फिल्म का, जी हाँ, जिसका आपने अभी अभी कंट्रोवर्शियल वाली एक मार्केटिंग गिमिक के बारे में सुना, उसी फिल्म का अगला जो गाना है वो यहाँ पर क्या कर रहा है और इस फिल्म के पीछे और क्या चल रहा है? Well, I'm going to talk about that in just a little bit, guys. Welcome back. This is Masti Top Charts with Antara.
8: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
9: ये मेरा सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला है, ये मस्ती टॉप चार्ट्स में त्रेडू का ही है ना, आंध्रा का नाम लगाने से कुछ कुछ नहीं होने, सब जानते हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है कि क्या चल रहा है यहाँ पर।
7: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते, कुछ भी, व्हाटएवर। वरुण धवन, मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े, जी हाँ, ये तीनों के तीनों शेयर कर रहे हैं स्क्रीन स्पेस अपनी इस फिल्म में, जिसके बारे में अभी भी हम बात कर रहे थे। कंट्रोवर्सी से हम दूर रहते हैं, लेकिन वेल, फैक्ट्स बताने आपके लिए हम बहुत जरूरी हैं। ये फिल्म जून में आने वाली थी, लेकिन अब मई में रिलीज हो रही है। क्यों हो रही है? शायद उन्होंने देखा होगा, यार अब मई में कर लेते हैं, इससे पहले कि धुरंधर और किसी और धुरंधर के बीच में। That must be the reason. और क्या रीजन हो सकता है फॉर ब्रिंगिंग इट फॉरवर्ड? अंतरा, तुम्हें क्या लगता है?
9: और क्या मतलब, धुरंधर जिस हिसाब से मतलब करती हुई जा रही है, तो आई थिंक दे आर रियली रियली स्कैर्ड। इनफैक्ट मैंने तो सुना धुरंधर अपना BTS का भी पूरा वो निकाल रही है एक मूवी व्हिच दे आर गोइंग टू रिलीज ऑन द थिएटर्स, एंड दे शुड जस्ट रिलीज ऑल द मूवीज बिफोर दे डू दैट।
7: एक्चुअली करना चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर न्यूज में भी यही है कि देयर इज लिमिटेड कॉम्पिटिशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ मे, और समर हॉलीडेज भी होंगी, तो इट्स एन आइडियल टाइम टू अटेंड टू अट्रैक्ट द यूथ एंड फैमिली ऑडियंसेस। लेकिन अभी फाइनल कॉल नहीं हुई है, जून से लेके मई में सबसे बड़ी बात है, देयर इज यश की टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, जो कि आने वाली है, तो उसके साथ अवॉइड कर रहे हैं सारे के सारे क्लैश। एंड एक मैं वापस आऊंगा भी इम्तियाज अली की फिल्म आने वाली है इन जून, सो दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन व्हाई पीपल आर सेइंग नहीं यार। एंड दैट इज गाना नंबर 18 कॉल्ड वाओ। Antra, aren't you happy there is at least some other music coming in now? Yes. And feeding off is the
9: I weather. Am. Ah. वैसे हमारी हालत वैसी नहीं हो गई है कि मरता क्या ना करता।
7: कुछ तो नया लाओ यार।
5: Trending song number 18. Say whoa!

0: मस्ती टॉप चार्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं गाने जी हाँ। और अभी तक फिलहाल के लिए जो टॉप 20 चार्ट्स में से हमारे 3 गाने चल चुके हैं उनकी एक झलक हम आपको फिर से देना चाहेंगे राइट आफ्टर दिस वन।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्त।
0: मुझे तो लगा हमारे बारे में बात कर रहे हैं हॉट स्पाइसी हैपनिंग हर चीज, लेकिन फिर इसने कहा मस्ती टॉप चार्ट्स। That was gun number 20 played this evening followed by and right after this one which was on 19 aaya tha hamara agla gana which is We have no idea how you feel about the new tracks guys but if you do have views then 9151896 3 hai na antara aur aapki khabar kya hai
2: या एक बहुत ही एक्चुअली अच्छी मूवी थी ये बट अपने टाइम के लिए बिकॉज वो इतनी आगे कि आगे सोच लिया था केजो ने कि इट वाज नॉट रिसीव्ड दैट वेल। आई एम टॉकिंग अबाउट कभी अलविदा ना कहना।
0: आई लव द मूवी, बहुत ही बढ़िया, आई लव इट,
2: सच अ नाइस मूवी राइट। तो जब आपको पता ही है एवरीबॉडी नोज जब रिलीज हुई थी तो सबने कहा था कि भाई ये क्या दिखा दिया, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया, क्या ही कहानी दिखा दी है। कितने सारे लोगों की पोले खोल दी उस कहानी के जरिए एंड लोगों ने कहा कि भाई इतना भी साफ साफ सच्चाई नहीं दिखानी है जो है स्क्रीन के ऊपर। बट अपेरेंटली अभी बातें कुछ ऐसे कल्ट क्लासिक बन गई है वो, क्योंकि बाद में लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। नाउ दे आर प्लानिंग टू टर्न दैट इनटू अ वेब सीरीज।
0: ओह वाओ,
2: एक्चुअली केजो ने कंफर्म किया ये बात।
0: क्या बात है, क्योंकि नई चीज तो कुछ बन नहीं रही भाई से, सो पुरानी चीजों में ही जो की ऑफकोर्स ज्यादा चली नहीं है लोगों को शायद बाद में समझ आई है। सिलसिला फिल्म्स लाइक दिस यू नो फॉर सम रीजन दे आर नॉट एक्सेप्टेड दैट इजी, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद में लोग कहते हैं ओए ये तो बहुत अच्छी थी, फिर उसको
2: ब्लेम विद आई थिंक लम्हे आल्सो
0: फेस
2: अ लॉट ऑफ बैकलैश बिकॉज़ ऑफ द स्टोरी लाइन।
0: एब्सोल्युटली। सो ये जो थोड़ी सी ऑफ बीट टाइप होती है जो की हमारे कल्चर कम्युनिटी में टोटली फिट नहीं बैठती बढ़ जाते हैं फिल्म्स जैसे तो All right, coming up next is हमारा गाना नंबर 17 जो मैं कहती हूँ कि हर फ्राइडे शाम को मेरे घर से भी आते हैं। अब तो घर कब आओगे अंतरा से भी यही पूछा जाता है।
3: Trending song number 17.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: Trending song number 16.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: भाई ये घर कब आओगे? आओगे? नॉट बैड, इट्स एक्चुअली डूइंग नॉट बैड। 18 से 17 पे आ गया तो मतलब अभी भी इसमें पोटेंशियल काफी है, पोटेंशियल टॉप चार्ट्स पे रहने की।
3: माना था अंतरा ही गाना नंबर 1 पे रूल कर रहा था, वहां पे जो रूल कर रहे थे वो आज तक गहरे हुए पड़े उधर ही, और ये बेचारा 17, 18, 19 आउट।
2: आई नो।
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
3: जी हाँ बिल्कुल, 8 तारीख है और अप्रैल खत्म हो गया, मई आ गया, और मई आई गो अहेड टू गाना नंबर 15 अंतरा।
2: Yes, yes.
3: Alright, so guys, अभी आप सुन रहे थे, जी हाँ, जैसे कि अंतरा ने कहा, गाना नंबर हमारा 17 was घर कब आओगे, followed by गाना नंबर 16 जिसके बारे में मैं बात ही नहीं करी, that was this one।
4: जिन्नी सोनी लग दी है मनु किसे हो।
3: जी बिल्कुल, from
2: new entry,
3: absolutely, इसीलिए इसके बारे में बात करनी जरूरी थी। खैर, पसंद आया कि नहीं, मैं शर्त लगाती हूँ कि अगली बार नहीं रहेगा।
2: ये अभी से कह रही है, ये ना अपने दिमाग में टिक मार कर रही है, ये इसने कर लिया जो आज करना है, ये गाना तो नहीं रहने वाला है इस टॉप चार्ट्स में।
3: बिल्कुल, और मैं सबको बताना चाहूंगी कि भाई ऐसा है कि आज का जो टॉप चार्ट्स है वो शो मेरे नाम है, मतलब पर्ची मेरे नाम की कट रही है, लेकिन डेफिनेटली उस शो के जो गाने हैं, जो सारे के सारे सीरीज है, वो आज अंतरा जी के हिस्से हैं। तो अंतरा जी, आपने कैसे डिसीजन लिए आपने कि भाई ये गाने पलटने चाहिए इधर उधर?
2: जी जी, मतलब मुझे लगा कि जहां जहां मेरी ट्रेडमिल में मेरी बैंड बज रही थी सुनते हुए, मैंने वाह वाह डाल दी है कि कुछ नए गाने यहाँ आने चाहिए। एनर्जी बढ़ाने के लिए, एनर्जी
3: देख लो यार, रेनू का है, फुल रिसर्च करती है, पता लगाती है बाकी सारी दुनिया में क्या चल रहा है, हम मेहनत करते हैं और पता लगाते हैं टॉप चार्ट्स क्या होने चाहिए, ये अपने ट्रेडमिल के हिसाब से पता लगाती है कि भाई मैं इस टाइम पे इंक्लाइन पे होती हूँ तो ये गाना चलना चाहिए। And that is gana number 15 coming up next from Cocktail 2. हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे?
2: कितना अच्छा अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को सुनते हुए, कितना मतलब एक फ्रेश सी फीलिंग आ रही है ना? Please tell her.
3: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आ रही है, बहुत खुश है वो, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आप हर हफ्ते आओ मेरे साथ।
2: मुझे कोई बुला रहा है ना, मुझे को अभी लग रहा है कोई आवाज दे रहा है मुझे दूर से।
5: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
6: आई लव यू रसना,
5: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali Antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Masti 24/7 Live.
7: Trending song number 15.

0: चार्ट्स टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009।
1: और हमारे दूसरे घंटे में आपका स्वागत। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं 5 बजे से यहाँ पर एक बंदी है, बंदी दो तरह के बंदी, एक होती है बंदा बंदी और
2: I agree. I was about to say that कि हाँ बंदी है वो, मैं हूँ वो जो दूसरा वाला बंदी होता है ना, जिसको बंद कर लिया जाता है, बाहर से चाबी लगा के फेंक दी जाती है दरिया में, वो मैं वो।
1: जी, और ये है बंदी ग्रह से प्रस्तुत करते हुए हम दोनों मस्ती टॉप चार्ट्स।
0: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
1: And on Masti Top 20, हमारे दूसरे घंटे में, जी हाँ, अब आप गाना नंबर 14, 13, 12, 11 ऐसे सुनते पहुंचेंगे गाना नंबर 1 पर. But let me remind you guys that the person who's behind these tracks today and the whole list is not me. ये इसने घूस मांगी थी मेरे से कि अगर मुझे रखना है तो मेरे हिसाब की लिस्ट बनेगी, तो मैंने कहा ले,
2: और क्या
1: ले ले,
2: इट हैज टू बी अ फेयर डील समवेयर एंड एवरीबॉडी इज लविंग इट, ओके, एवरीबॉडी इज लविंग इट।
1: खुद ही अपने आप खुश रख रही है, वैसे ही जैसे आमिर खान खुश है अपनी जिंदगी में, खुश है बोल के कि मुझे तो लोग थैंक यू कह रहे हैं कि मैंने उनको हिंदी फिल्म में डेब्यू दिया है। ऑलराइट, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट नन अदर देन साई पल्लवी, जिनका डेब्यू होने जा रहा है उनकी हिंदी फिल्म एक दिन में। एंड ये जो बहुत ही प्यारी सी लड़की है जिनको सीता का भी रोल मिला है इन रामायण, एज यू नो, शी इज सेइंग दैट शी इज काइंड ऑफ एक्साइटेड नर्वस एज शी स्टेप्स इनटू बॉलीवुड आफ्टर अ सक्सेसफुल करियर इन साउथ इंडियन सिनेमा। तो वेल, जुनैद के साथ में इनकी फिल्म है एंड ऑफ कोर्स आमिर खान की बैकिंग है, तो आपको क्या लगता है अंतरा जी कि ये फिल्म हिट होने वाली है या नहीं होने वाली है?
2: बस यही कहना है मेरा कि ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत करते रहो बेटा, मेहनत।
1: सही बात है। आमिर खान जी ने मौके पे लगाया चौका, उन्होंने कहा चलो भाई इस लड़की को अब तो रामायण मिलने वाली है, तो इन्होंने 39 डेज पहले ही मूवी की बुकिंग शुरू कर दी है, विच इज येट अगेन अ क्रेजी थिंग टू डू। दैट्स गाना नंबर 14 कमिंग अप। इसको इन्होंने बहुत गिरा दिया है, पता नहीं इनको बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाला गाना, फॉलोड बाय द रॉन्ग सॉन्ग इज आई ऑलवेज से, जो पिछले हफ्ते था 14 नंबर पर, इस समय आ रहा है 13 पर। नॉट बैड ऑन रेडियो मस्ती 24/7। अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी बैक विद सम मोर गॉसिप, है ना, मेरी बंदी
2: यो
1: बोलेगी।
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 14।

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
1: Trending song, number 13.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: वेलकम वेलकम, रेडियो मस्ती 24/7। जी हाँ, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं उस एक्साइटिंग दौर की तरफ जहां पर पता लगेगा हमें कि आज का गाना नंबर एक कौन सा है। फ्रैंकली गाइज, मेरा ही शो है, मेरे नाम के यहां पर पत्ते निकल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा आज गाना नंबर वन।
4: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
5: दैट इज फॉर श्योर कि वो वाला नहीं है जो ये पता नहीं पिछले 10,000 साल से नंबर एक पे उन्होंने रखा हुआ है। आज जो है वो इतना मैं हिंट दे सकती हूँ, वो गाना एक हफ्ते के लिए उस तख्ती से हटा दिया गया है। तो आप अब गेस करो कि those who listen to me, those who know me, कौन सा है गाना नंबर।
2: जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ हम सब समझते हैं इन्होंने सडनली वो गाना लेकर आई होंगी जो कि हमने बहुत टाइम से रखा भी नहीं है हमारे टॉप चार्ट्स में, तो टोटल सरप्राइज पहुंचेगा।
5: बगावत की बू आ रही है मुझे यहाँ पे, बगावत की बू।
2: तो बताइए अगली गॉसिप क्या है हमारी बॉलीवुड से, बिकॉज दिस हैपेंस टू बी अ फुल टू बॉलीवुड शो।
5: या या, द गॉसिप वाज, आई डोंट नो वेदर यू ऑल हैव वॉच्ड दैट इंटरव्यू और नॉट। सो हमारी जो है जैकी बागनानी और उनकी जो अभी इनका वो आयुष्मान खुराना के साथ जो करके आ रही है रकुल प्रीत, तो हस्बैंड वाइफ ये लोग पॉडकास्ट में बुलाए गए थे इंटरव्यू। अब व्हाट हैपेंस व्हेन अ मिलेनियल इज लाइक काइंड ऑफ एक्टिंग कूल एंड वांट्स टू यूज द जेन ज़ी लिंगो, तो वो फंस ही जाता है। तो जाके भगनानी कहते हैं पॉडकास्ट में कि मेरा और रकुल प्रीत का जो रिश्ता है ना, वो एकदम
2: सिचुएशनशिप
5: जैसे लाइक रकुल प्रीत मतलब उसका बस चलता है, उसके अपने एक्सप्रेशन संभाल के रखे होंगे उस टाइम के, कि भाई तू क्या बोल रहा है, मतलब आराम से, कि तो मेरी एक्स का फोन आता है मैं तो स्पीकर पे रख देता हूँ। और वी आर ट्रांसपेरेंट, लाइक ट्रस्ट ऐसा है, मैं सामने बात करता हूँ ऐसे करके। फिर बाद में रकुल प्रीत ने उसे कान पकड़वा के वीडियो डलवाया है और यूज करने तुम्हें जेन ज़ी के लिंगो, और करने सिचुएशनशिप हो गई ना तुम्हारी,
2: बस ना समझ आए तो चुप रहो ना यार, और समझ आए तभी मुंह खोलो, और वो भी अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो वैसे भी मुंह मत ही खोलो। And this is गाना नंबर 12 playing on मस्ती टॉप चार्ट्स। ये गाना डेफिनेटली बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी पार कर रहा है अपने रास्ते, एंड आई थिंक इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड, राइट अंतरा? चाहिए अगेन येट अनदर रीमिक्स है, या कह लो कि
5: आई नो, आई मीन, बट इफ यू लुक एट द प्लेलिस्ट, इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर काइंड ऑफ रीक्रिएटेड और रीमिक्स्ड वंस, सो This is the current scenario, what to do.
2: ठीक है, सुनते हैं ये भी, देखते हैं आगे आगे क्या हो रहा है। Nice surprise lined up for me as well today, guys.
3: Trending song number 12.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Bollywood Flashback.

0: 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। तुमने सुना तो होगा ये भी अंतरा, है ना?
1: They are fresh. They are hot. They are spicy. And they are happening. Join us on Masti.
0: Masti Top Charts का एक नया ट्रेंड चला है यहाँ पर, जिसमें कि रेनुका कहती है कि नहीं, मैं अकेले फ्राइडे इवनिंग नहीं बैठूंगी। मेरे को अगर शो मांगा था मैंने, और मुझे धमकी दी गई कि आपने कहा था कि आपको एक शाम का शो करना है और इसीलिए हमने आपको फ्राइडे का शो दे दिया। मैंने ये तो नहीं कहा था सारी पार्टियां मेरी मिस हो और तुम जिम जाओ, तुम पार्टियां करो, तुम सब कुछ करो और मैं यहाँ बैठ के काम करूं। क्यों भाई प्रोग्राम मैनेजर,
2: देखो कैसे कैसे कैसे उभर उभर के आ रही है ये सारी बातें, आप देख रहे हो? पहले मेरे से कराया, अच्छा मुझे तो दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी आई वांट टू डू इट। उसके बाद मुझे ये आई का वी कब हुआ समझ में नहीं आया।
0: तो गिविंग यू अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन इसे कहते हैं। राइट तो भाई मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी अबाउट 900 चूहे खाके, तो करण जौहर, जी हाँ करण जौहर ने आवाज उठाई है, बहुत ज्यादा आवाज उठाई है, कह रहे हैं कि भाई हद हो गई, कितनी घटिया बात है कि हमारा पेड पब्लिसिटी बॉलीवुड में बढ़ता चला जा रहा है और हमारा जो ट्रू ऑडियंस का सेंटिमेंट है वो हमें दिखता ही नहीं है इस चक्कर में। मतलब पैसे दे दे के लोग अग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये हो गया, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऑडियंस का सच्चा व्यू क्या है वो तो देखने दो। And that is gonna be Gyara coming up next. हाँ तो अंतरा जी, आपको लगता है कि ऑडियंस का सच्चा बिहेवियर देखने देना चाहिए?
2: मतलब आउट ऑफ ऑल द पीपल हु इज सेइंग दिस, किंजो
0: एग्जैक्टली,
2: लाइक आर यू श्योर यू आर इन अ पोजीशन टू से समथिंग लाइक दैट? या एक बार रिविजिट कर लो अपनी लाइन इससे पहले कि ऑनलाइन ट्रोलर्स आके वो रिविजिट करवा दे।
0: एग्जैक्टली, और वहीं से तो पीआर ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। पीआर करना ही बंद कर देना चाहिए, उनके अचीवमेंट्स अपने आप बोलो, मतलब बिकॉज तेरी अपनी पीआर टीम अच्छी नहीं है डजंट मीन कि बाकी लोग यूज नहीं करेंगे। आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज योर पीआर टीम, दैट्स व्हाट इट इज।
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 11।

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: वेलकम वेलकम, स्वागत स्वागत. मेरा शो है इसीलिए मैं ही शुरू करूंगी, लेकिन उसके बाद काम करेंगी सारा का सारा. हमारी जो आज बड़ी आई है ना यहाँ पर जो हमारी गेस्ट बन के आई है, जो पिछले हफ्ते बुराइयां कर रही थी हमारे टॉप चार्ट्स की, मैं देख रही हूँ धीरे धीरे एक ट्रेंड निकल के आ रहा है इनके टॉप चार्ट्स में भी, उसके बारे में बात करते हैं.
3: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती.
4: हाँ, ये कहना चाहती है कि इसके सारे फेवरेट जो धुरंधर के गाने हैं ना, सब इसने लाइन से बैक टू बैक लगा
2: दिए. एक्चुअली वेरी ट्रू. सो आई सी दैट अभी जो जैसे दो गाने आने वाले हैं, राइट, 10 और 9, मैं देख रही हूँ कि 10 में इन्होंने एक नई एंट्री घुसाई है, ठीक है, और वो नई एंट्री इज देयर, इट्स प्रीटी गुड. मतलब नया गाना आते ही 10 पर आ जाए, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज की दुनिया में. और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, 10 वाले को 9 कर दिया है, 9 वाले को 8 कर दिया है. तो पिछले हफ्ते जो मेरे साथ लड़ाइयां हो रही थी इनकी, नहीं नहीं कुछ अलग होना चाहिए, तो वो अलग सिर्फ एक नंबर का था अंतरा जी.
4: और क्या, अब नई एंट्री में कोई आएगा तो अगलों को थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना. अब देखो कैसे, मतलब धुरंधर को कैसे मैं वापस ऊपर ऊपर भेज दूं, अभी नहीं, अभी नहीं वो वक्त आया है,
2: अभी नहीं, अभी ऊपर नहीं भेजना है. और अभी इस बात का वक्त नहीं आया, और इस बात का भी वक्त नहीं आया है कि आशिकी 2, जी हाँ, जो अभी 13 साल पुरानी हुई है, उसके डायरेक्टर मोहित सूरी से पूछा जा रहा है कि भाई आशिकी 3 क्यों नहीं कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम, मतलब तुझे आशिकी मूवी याद है, the one and the two?
4: Yes, yes.
2: And
4: I completely remember.
2: बस प्रॉब्लम सारी ये है कि अभी राहुल रॉय है जैसे, या अनु अग्रवाल है, ठीक है, अनु अग्रवाल के साथ तो खैर बहुत ही ट्रेजिडी जो हो गई, 1 की बात कर रही हूँ मैं. और राहुल रॉय जो हैं वो अभी उस दिन बेचारे उनके पीछे ही पड़ गए हैं लोग, मतलब वो बंदा बदल गया है यार, वो क्या था तब और क्या अब हो गया, ऑब्वियसली उम्र हो गई है, बहुत कुछ बदल गया. वो एक सूटकेस लेके सड़क पे बॉम्बे में चल रहा था, ठीक है, उसकी फोटो देखो क्या हाल हो गया है, देखो क्या हाल. Come on guys, leave him alone. The kind
4: ये
2: of
4: ना, ये पपराजी लोगों ने ना ये सारी चीजें कर करके बहुत ही बैंड बजा रखी है. लाइक इवन नाउ यू डोंट नो कि मतलब व्हाट टू बिलीव व्हाट दे आर पोस्टिंग आल्सो. वो एक दिन आलिया भट्ट हॉस्पिटल के बाहर से शायद जेनरिक चेकअप करा के निकली होगी. क्या कोई गुड न्यूज है? वो हॉस्पिटल से क्यों? अरे भाई, इंसान है वो, जा ही सकती है हॉस्पिटल.
2: That is the new gana which has made an entry on number 10. और यहाँ पे भंगड़ा शुरू हो गया है. मैं भी शुरू हो जाऊंगी. I love this entry. By the way, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी अंतरा जी. And of course, followed by this gana which अभी तक मैं डांस नहीं कर पाई हूँ.
0: Trending song, number 10.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन, योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर, नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
3: Trending song number 9.

0: आइए आइए और आपके स्वागत में यहाँ पर और बॉलीवुड की गॉसिप बिल्कुल तैयार है। आई नो पीपल हु लव बॉलीवुड अंतरा एज यू कैन सी द मैसेजेस आर एक्चुअली एंजॉयिंग एंड एंजॉयिंग कि अच्छा ये भी है और तुम दोनों मतलब सबकी लगा रही हो, हम छोड़ते हैं क्या किसी को?
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
2: भाई हम तो कहते हैं रिपोर्ट आर टू बी बिलीव, तो उसके बाद आओ अच्छे से गॉसिप करें।
0: एक्चुअली बॉलीवुड की खबरों में ना ये सबसे आधा मजे हैं, आधा रिपोर्ट होती है और आधा हम रिपोर्ट में डाल देते हैं। बट दैट्स, देखो हम अपफ्रंट होके बता रहे हैं कि बॉलीवुड की खबरें विल नेवर बी कंफर्म्ड, राइट? देयर विल ऑलवेज बी स्पेक्युलेशन, देयर ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ थिंग। जैसे कि एक स्पेक्युलेशन है कि अक्षय कुमार जो है ही यूजेस टेलीप्रॉम्प्टर ऑन द सेट्स, वो कभी अपने डायलॉग याद नहीं करते हैं। भाई अब इंडस्ट्री बोल रही है कहीं धुआं उठा है तो आग कहीं तो होगी ना, क्यों अंतरा जी? आपको क्या लगता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल कहा तो जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव नोटिस्ड कि हम तो उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं कि शायद ही रूमर ही होगा, बट वो सच्चाई निकल आती है।
0: और देखो ना, एक बार जब हमने अपने कॉर्पोरेट वीडियो का शूट किया था तो अक्षय कुमार, अंतरा जी ऐसे जो पॉपुलर सुपरस्टार्स होते हैं ना, उनको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है। हमारे अपने स्टूडियो में हमने देखा है कि छोटे मोटे स्टार्स लाइक मैं, हमको याद हो जाती है लाइनें, लेकिन बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े जो मल्टीपल फिल्मों में कास्ट हो रहे होते एंड दैट इज गाना नंबर 9 कमिंग अप नेक्स्ट। हाँ,
2: व्हाट अ मेमोरी, एंड आई हैव नो शेम इन लाइक एक्सेप्टिंग इट आल्सो। मेरे से नहीं होते यार, रट्टा नहीं मारा जाता मुझसे। तो हम लोगों ने फिगर आउट इतना, और उस टाइम पे वो, आजकल तो कितने एप्स वगैरह आ गए ना रेणुका, उस टाइम पे तो जुगाड़ वाज द मेन थिंग कि कहाँ पे ये जो प्रिंट आउट है वो चिपकाया जाए ताकि मेरी आंखें कैमरा पे रहे लेकिन मुझे दिखे भी साफ साफ, क्योंकि आंखें भी उतनी तेज नहीं है तो फॉन्ट भी बड़े होने चाहिए। इट वॉज इनसेन।
0: समटाइम्स एम आई ग्लैड कि हम भारतवर्ष से हैं जहां पर जुगाड़ हैज बीन हमारी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस वर्ल्ड। सो यस, वी आर एबल टू डू दैट। Radio Mercy 24/7 has just said Gaana number 9, but actually that is Gaana number 8 coming up next. And of course, पिछले हफ्ते वो 9 पे था, मैंने कहा ना एक एक नंबर हटा के, मतलब इन्होंने नई प्लेलिस्ट बनाई है आज।
3: Trending song number 8.

0: जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। एक माँ का प्यार ही तो है कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, उसका प्यार कभी कम नहीं होता। रेडियो मस्ती 24/7 विशेस ऑल द अमेजिंग मदर्स अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
1: They are fresh. They are hot.

0: charts are two ruling the countdown. Yeah, musty top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: गद्दारी की बू। जी हाँ, इस घंटे के गाने रिवील हुए और मुझे गद्दारी की बू आ रही है। बू इनको जो भी आ रही थी पहले, ये डबल ट्रिपल 10 times बू है।
2: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musty Top 20.
3: अब इन्होंने आज जो है इस बंदी को बंदी बुलाया हुआ है, तो मेरे को कुछ तो करना था। मैं सोचा कि ऐसा करते हैं कि when she did not realize it, अभी तक she just realized कि क्या हुआ है इनके साथ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, आमी छाओ ना।
1: मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। रॉक तो खाओ। आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू नो व्हाट हैज हैपेंड, शी हैज थ्रोन माय फेवरेट सॉन्ग, वन ऑफ माय टॉप फेवरेट्स, जिसको जब भी मैं टॉप चार्ट्स करके घर वापस जाती हूँ, इट इज प्लेइंग फुल ब्लास्ट इन माय कार। ओके, फुल ब्लास्ट, क्योंकि उसमें उफ क्या दर्द है, उसमें क्या क्या आवाजें हैं, उसमें क्या म्यूजिक है, लेकिन इन्होंने उसको लात मार के निकाल दिया टॉप चार्ट से। She has actually thrown. I'm not going to tell you more than this right now. लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आज किसी के में दम है तो वो इंसान यहाँ पर गाना नंबर एक बता के दिखाए। मैं कहती हूँ मैं पर्सनली घर आके आपको अवार्ड दूंगी अगर आपने आज का गाना नंबर एक पहचान लिया तो। That is number 7 playing next.
3: See, I made sure that Renuka will stay till गाना number 1 क्योंकि ये वो वाला गाना लगा के फिर चली जाती थी ना गाड़ी में ब्लास्ट में सुनने के लिए।
1: जरूर, इसी वजह से इन्होंने उस गाने को इतनी जोर से लात मारी कि वो मेरी कार में ही जाके बैठा हुआ, कहता बहन यही सुन ले, मेरे को स्टूडियो में भी जगह नहीं मिली आज के दिन में, भाई मैं तुझे वापस लाऊंगी, तू वापस आएगा, तू वापस आ। प्रॉब्लम ये है, एक बार एक गाने को लात पड़ जाए तो वो बेचारा अपनी जगह पर नहीं आ सकता वापस, इट हैज टू स्टार्ट अपने आप, जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, बेचारा फिर से वहां से।
3: जी जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत गंदा, बहुत गंदा। मुझे लगता है अगली बार मुझे तेरे साथ वही करना पड़ेगा जो तूने मेरे इस गाने के साथ किया है। ऑन रेडियो मस्ती गाइस, जितने लोग मेरे साथ मतलब सांत्वना दे रहे हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9151896 3 पर।
4: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7 and don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musty 24/7 Singapore.
5: Check it out.
4: Trending song, number 7.

0: is it all destiny? Destiny, don't lie to me.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर,
1: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप.
1: वाजी क्या बात जी,
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर.
3: इट्स टाइम फॉर
4: मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: मैं बहुत गोरी हूँ और मैं बहुत एजुकेटेड थी फॉर दिस रोल. मेरी ना आंखों में एजुकेशन नजर आ रही थी. ऑन रेडियो मस्ती 24/7 कौन हो सकता है ये इंसान जो कह रहा है मेरे से वो बहुत बड़ी फिल्म का रोल ले लिया गया बट ओनली बिकॉज मैं बहुत गोरी हूँ और मैं बहुत एजुकेटेड लगती हूँ.
4: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20.
5: भाई मस्ती टॉप चार्ट्स बाय द वे चल रहा है बट बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं इस इंडस्ट्री में हु आर केपेबल ऑफ सेइंग दिस लाइन कि ये नहीं मिला बिकॉज आई वाज लाइक टू क्वालिफाइड फॉर इट.
3: एक्चुअली और क्वालिफिकेशन उनकी है भी ऐसी. मुझे तो समझ में ये नहीं आता अगर तुम इतनी हाईली एजुकेटेड एक्ट्रेस हो जो कि आप डिग्री होल्ड करते हैं इकोनॉमिक्स में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी मेडफोर्ड मैसाचुसेट्स यूएसए से और आप वहां
5: आई नो
3: वहां की आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो फिर आप यहां आकर फिल्मों में क्या कर रही हैं कर क्या रही हैं क्या हुआ उसके बाद बताओ जरा.
5: कहो ना प्यार है कहो ना यही हुआ
3: एग्जैक्टली और उसके बाद में लड़ाइयां कर रहे हो तुम घर के अंदर. तुम्हारी माँ बोल रही है तुमने चोरी कर ली है चीजें तुम बोल रहे हो तुमने कर ली इनके मतलब इतने एजुकेटेड लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं. बट एनीवे कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं थी. इनको लगान जो फिल्म थी आमिर खान की उसमें से निकाला गया था क्योंकि ये बहुत गोरी है और ये बहुत एजुकेटेड है और कहती है मेरी आंखों से झलकती है ये बातें इसीलिए
5: हम सिर्फ सुन के ये कह सकते हैं राइट राइट अमिशा आई अंडरस्टैंड इट्स ओके.
3: और इतने एजुकेटेड लोगों के लिए वाकई इस इंडस्ट्री में ज्यादा जगह नहीं है ये तो आपके करियर पाथ ने हमें बता ही दिया. क्यों भाई अंतरा जी
5: टू मच फॉर देम आल्सो टू हैंडल.
3: कई बार अच्छी चीजों को भी ना लात पड़ जाती है जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अच्छी चीजों को भी पड़ जाती है. मेरे बेस्ट गाने को इस बार लात पड़ गई है. बट जहाँ ये बोल रही है पॉलिटिक्स नहीं थी मैं कहती हूँ ये डेफिनेटली पॉलिटिक्स है यहाँ पर क्योंकि मुझे लग रहा है ये बॉस के फ्राइडे को रोकने की वजह से बॉस के फेवरेट गाने को निकाला गया है फ्रॉम मस्ती टॉप चार्ट्स है ना अंतरा.
5: है नहीं नहीं यू ऑल नो मी आई एम सच अ नाइस पर्सन हाउ कैन आई डू दैट. नो नो नो
3: देखा देखा देखा.
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 6.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर नॉट रेडी फॉर दिस.
7: ना दे दिल पर देती मुंह तेन नित दारूणा

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Trending song number 5.

0: as the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se. एक होती है जिंदगी की कॉम्प्लिकेशन वैसे भी, और एक होती है वो कॉम्प्लिकेशन जो बनाई जाती है जिंदगी में ऐसे भी, मतलब ऑन रेडियो मस्ती 24/7 बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती.
1: जैसे इन्होंने आज रेलुका ने खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया पूरी चीज, अच्छा खासा आराम से अपनी स्पेस में बैठ के शो कर रही थी अपना, लेकिन नहीं, इनको लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए थी, इसीलिए आज मुझे यहाँ पे बिल्कुल वापस से इस सीट पे बिठा दिया गया है, क्योंकि उनको फन आ रहा है. इनका जब मन आ रहा है माइक ऑफ कर दे रही है, कहती है फिर उसके बाद ओ अच्छा उप्स बंद हो गया, खत्म हो गया. मैं यहाँ पे बोली जा रही हूँ.
0: अच्छा तो मैं एक बात बताती हूँ, मतलब ठीक है इंसान ऐसे ही सीखता है. अब क्या है ना, मैं आमिर खान की जिंदगी की बात कर रही हूँ, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन. अभी जब उनकी ये नई फिल्म एक दिन जो आ रही है, राइट, उसमें उनकी पहली पत्नी के साथ में जो उनका बेटा है जुनैद, ठीक है, दैट इज द गाय हु स्टारिंग इन द फिल्म, तो चलो प्रीमियर पर वो तो आएगा ही, ठीक है. उसके बाद उनकी जो तीसरी अब गर्लफ्रेंड है, राइट, वाइफ तो नहीं कह सकते, जो तीसरी औरत है उनकी जिंदगी में, गौरी स्प्राट, जो कि अपने गौरी स्प्राट अपने जर्मन हस्बैंड का फैमिली नेम नहीं छोड़ती बिकॉज इट जस्ट साउंड्स गुड. अब वो गौरी इंडियन बन जाएंगी तो स्टाइल खत्म हो जाएगा. तो वो गौरी जो कि स्प्राट अपने एक्स हस्बैंड के नाम के साथ में और अपने एक बेटे के साथ में उस इवेंट पर आई, और साथ में आया आजाद राव खान भी, जो कि दूसरे
1: सेकेंड
0: के साथ में का
1: बेटा है.
0: हाँ, पर दूसरे का भी आधा ही है क्योंकि वो सब साथ में सरोगेट है, तो यू नो हाउ इट इज कि उसमें एक और भी औरत इन्वॉल्व्ड है इन एन अननोन वे. तो मैं ये सोच रही थी कि जिंदगी एक होती है कॉम्प्लिकेटेड और एक होती है जिंदगी आमिर खान की, राइट, दीज टू थिंग्स आर टोटली आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग. क्या बात है, क्या बात है, कितनी इज्जत दी गई है इस गाने को कि पांच परी रखा गया है एज लास्ट टाइम में, तो वारी जावा वारी जावा. सो अब आप सोचो कौन सा गाना है जो नहीं आया अब तक, थिंक अबाउट इट, है ना अंतरा जी. आते ही हम ये बताएंगे कि 4, 3 और 2 पे कौन सा गाना है आज, ठीक है, लेट्स डू दैट. स्टे ट्यून्ड पीपल, मेरे साथ रोने के लिए तैयार हो जाओ. गुड इवनिंग एवरीवन.
1: आप नहीं रो, इसीलिए ये चेंज किया है, इसीलिए.
0: मैं या बाकी सब?
1: बाकी सब, आप इंक्लूडिंग आप. देखो वो गाना सुनते ही आपको रोना जाता है ना, आपके आपके आंखों में आंख बर्दाश्त नहीं मुझे.
0: आज आज किसकी आंखों में आएंगे वो देखेंगे हम, रुको तुम.
2: Trending song number 4.

0: यहाँ पर जो है माहौल काफी गंभीर हो रखा है। बात बात पे मुझे घूरा जा रहा है यहाँ पे अक्रॉस द टेबल, ऐसे आंखों में से ना फायर की शॉट्स ऐसे प्यूं, प्यूं, प्यूं, प्यूं करते हुए लेजर वाले शॉट्स आ रहे हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई।
1: हाँ हाँ, फिर भी आर पार नहीं हो रहे हैं तुम में, मैं देख रही हूँ तुम वापस भेज रही हो मेरी तरफ।
2: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, they are spicy and they are happening. Join us on Masti Talk. We are fresh, we are spicy, we are hot, and of course we are happening.
1: रेडियो मस्ती 24/7 पर आज अंतरा और रेणुका साथ में मस्ती टॉप चार्ट्स पर। उसका रीज़न है कि भाई जैसा कि हम शुरू में बता रहे थे कि पिछले हफ्ते जब मैंने इनको रोका तो इन्होंने धमकी दी हमको कि मैं दुनिया जला के राख कर दूंगी, सब बदल दूंगी, ये बस ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है फिर एक बार और आके करो दुनिया जला।
0: But I kept my word, didn't I? Yes. I literally kept my word.
1: Yes. और किसी की दुनिया जली हो या नहीं, डेफिनेटली मेरी दुनिया तो जल ही गई है। So guys, I'm going to be playing three ganas, which are number 4, 3, 2, and you will be able to tell us aaj kaun sa gana 1 to nahi hai. All right, the next one. Raaz aur bhi gehra hua ki number 1 pe kaun sa hai. Ji, bilkul. Aur teesra gana hai. जी बिल्कुल, जान से गुजरते हैं ये तीनों के तीनों गाने, 4, 3 और 2 पर हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ नंबर 1 पर केड़े पासे जाए सजना नहीं है, नहीं है वो, नहीं है वो गाना। अंतरा, वो गाना क्यों नहीं है आज हमारे मस्ती टॉप चार्ट्स पर, ये बताओ तुम मुझे।
0: हाँ मतलब ठीक है, अच्छे से सेंटी गाना है, अच्छा गाना है, बट देन थोड़ा सा जब फ्राइडे शाम है धूम धड़ाका होना चाहिए, थोड़ा सा एकदम म्यूजिक में ऐसा जोश होना चाहिए, लाइक लगे कि फ्राइडे इवनिंग है। अब क्या क्या करेंगे हम, केड़े पास से जाए सजना, वैसे भी जिंदगी में इतना दुख है।
1: मैं बता रही
0: हूं बाद फिर
1: डिग दे
0: हंजू सरताज जी।
1: यस, माय आंसूज, माय हंजू आर आल्सो डिगिंग टुडे, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ यू राइट नाउ। बंगाल के इलेक्शंस क्या हो गए, सारी दुनिया के बंगाली चौड़ी हो गए।
3: बॉलीवुड फ्लैशबैक।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: वो है जो सबकी जगह ले सकती है।
1: तू कितनी भोली है।
0: और ये वो ही है जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता।
1: प्यारी प्यारी है।
0: रेडियो मस्ती 24/7 विशेस ऑल द अमेजिंग मदर्स अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
1: It's the best of Bollywood playing on Radio Mercy 24/7 Live. Have a musty bhara weekend.

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो। I say

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस।
2: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
3: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
0: टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
3: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

0: Går det med?
1: जागो जागो जागो, सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय, ठंडी हो गई।

0: जाग जा।
1: चल फोट भाग जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो भी तो सोया पड़ा है।
0: ए विलन बादशाह, ये क्या करता है?
1: अरे कसरत करता है, देखता नहीं क्या तू?
2: अरे इसे कैसे होता है? मैं

0: सारा दिन झगड़ा ही करोगे क्या है?
1: अरे साला, अभी तक लड़े हुए तुम लोग?
2: अरे छोटू, अरे तेरी तो
1: अपन को हाथ नहीं लगाना।

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
2: रात।

0: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रात।

संभल, अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना। हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ,

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: Once upon a time in La La Land, सुनो सुनो, हम 33 वर्ष हैं।

0: करते किसी से हम प्यार नहीं करते किसी से हम
1: हमसे हो हसीना ये ना कहना बच्चे रहना हमसे देखे जो हम एक बार।

रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।

0: फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
1: राइट.
0: कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
1: नदी जमी जते.
0: नदी जमी जते. सो सेक्सी.

नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

अब जब हम कहते हैं हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो, है ना, बिल्कुल सही बात कही ना इस गाने में. What a beautiful day and what a beautiful way to start our Monday morning. Hello, good morning and welcome to the morning show. Monday coffee का best partner, the morning show on Radio Masti 24/7. News, views and a pinch. Masti. Well, Monday सुबह का definitely partner है आपका the morning show. लेकिन वैसे तो Radio Masti 24/7 पूरे के पूरे time ही आपका partner रहता है. What say guys? Hello. 11 May. जी हाँ, it's 11th of May 2026 and it is time for the morning show. Renuka is back. जी हाँ, पिछले weekend के बाद में जरा छोटी सी छुट्टी मना रही थी मैं मंडे को. So yes, definitely I was away and I needed to rejuvenate. लेकिन उसके बाद में आ पहुंची हूँ बिल्कुल absolutely आपके लिए मंडे को. जी हाँ, लेकर हमेशा की तरह मंडे का वो वाला कोट जो मैं कहती हूँ आने वाले हफ्ते के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो वेल, आज का कोट कुछ ऐसा है, लाइफ कोट जिसे कहते हैं, इंस्पिरेशनल कोट है. वो कहते हैं कि भाई अपनी जो शक्ल है ना, अपना जो चेहरा है, कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड्स द सनशाइन एंड यू विल सी दैट द शैडोज विल फॉल बिहाइंड यू. तो सब कुछ छोड़ के आए आप मेरे पास रेडियो मस्ती 24/7 पर. जी हाँ, रेणुका विद यू एंड ऑफ कोर्स शुरू करते हैं द मॉर्निंग शो. मॉर्निंग शो से बढ़ते बढ़ते खबरों से इधर उधर पूरी दुनिया की सैर करते और साथ साथ में बढ़िया बढ़िया गाने सुनते आप और हम यहाँ पर पूरे के पूरे 10 बजे तक. जी हाँ, इट इज टाइम फॉर द मॉर्निंग शो विद रेणुका ऑन रेडियो मस्ती 24/7. स्टे ट्यून्ड.

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti.

0: इन बढ़िया गानों के इस बार बैठी हूँ मैं आपके लिए. जी हाँ, आपका स्वागत करने के लिए ऑन अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग गाइस. इट इज द 11th ऑफ मे एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर रेणुका विद यू. तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला सिंगापुर के साथ में. सुबह का असली वेक अप कॉल द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7. आपको याद होगा पुराने जमाने में हम पॉलिटिशियंस को अपने नेताओं को सिर्फ और सिर्फ टीवी पर देखते थे, राइट? और ऑफ कोर्स सुनते थे रेडियो पर और खबरें पढ़ते थे. लेकिन अब हाल ही में ऐसा हो गया है कि हमें लगता है दैट दे आर सो अप्रोचेबल सो रीचेबल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं सिंगापुर की, जहाँ पर हमारे जो MPs हैं वो इश्यूज जो पार्लियामेंट में रेस करते हैं वो अपने सोशल मीडिया पर आजकल डालते हैं, स्पेशली अबाउट कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, राइट? द न्यूज बैच ऑफ 25 बैक बेंचर्स, 20 तो है PAP से और 5 है वर्कर्स पार्टी से, उन्होंने पोस्ट करे हैं थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट ऑन द 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं. ऑफ कोर्स टिकटॉक भी उसमें इंक्लूडेड है, बट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम डेफिनेटली. सो इट इज कॉमन आजकल सोशल मीडिया यूज करना है जो नए MPs है ना, बिकॉज नई जनरेशन है, सब कुछ है, प्रीटी सैवी विद सोशल मीडिया, बड़े डेलिब्रेट और इंटेंशनल तरीके से पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया पर. वेल, इट हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर रोल इन फैक्ट कम्युनिकेटिंग पॉलिसी, एंगेजिंग रेजिडेंट्स एंड एम्पलीफाइंग देयर रीच. बहुत ही जरूरी है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना. सिंगापुर में मैंने जब से ये बात देखी है, मुझे लगता है यार मीनिंगफुल इंटरेक्शन जो कि ऑनलाइन हो सकती है विदाउट रियली गोइंग टेकिंग अपॉइंटमेंट्स और एनीथिंग, मैंने ये देखा है कि सिंगापुर में ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकती है. इनफैक्ट अगर आप हेल्थ मिनिस्टर ओंग यकंग की बात करें, वेल ही डिड रिसेंटली ऑन हिज रिसेंट इंश्योरेंस प्रीमियम चेंजेस, राइट? वो सिंगापुरियंस और फेलो मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ में बहुत ही एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन में अपने आप को उन्होंने देखा और हम सब ने उनके मैसेजेस देखे ऑन हिज सोशल मीडिया. सो गाइज, नेक्स्ट टाइम यू थिंक आपको कोई खास बात बोलनी है अपने मिनिस्टर्स को, अपने MPs को, तो वेल, व्हाई डोंट यू ट्राई एंड यूज द सोशल मीडिया. वाह, डर्टी पिक्चर, व्हाट अ ब्यूटीफुल गाना कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7. कहीं मत जाइएगा, मैं यहीं पर हूँ 10 बजे तक.
1: वी आर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड बॉलीवुड स्टाइल एनीवेयर एनीटाइम.

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: नहीं नहीं नहीं, सुबह सुबह मस्ती व्हाट्सएप पे जरूर रहेगी, लेकिन नॉट ऑन द एयरवेव्स. आई प्रॉमिस यू गाइस, दिस शो इज स्ट्रिक्टली गोइंग टू बी अबाउट न्यूज एंड अबाउट अ लॉट ऑफ मीनिंगफुल स्टफ, बिकॉज देयर इज सो मच टू शेयर. और मंडे मॉर्निंग, हाँ, थोड़ा सा तो टाइम ले लो, पंगेबाजी के लिए पूरा दिन पड़ा है. आई प्रॉमिस शाम के शो में अंतरा जी पूरी कसर कर देंगी. सीरियस हेडलाइंस with a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti 24/7. The next news on the morning show is about the passengers on the cruise ship which was hit by a deadly hantavirus outbreak. Aur kaha ja raha hai ki all passengers on that ship are considered high risk contacts as a precautionary measure. Ji haan, Europe ke public health agency ne baat kahi hai. Jaise hi ship anchor hone lagi the Spanish island of Tenerife mein, is baat ko jari kiya gaya. Good morning on the morning show, talking about the hantavirus outbreak. जी हाँ, the much talked about virus outbreak, जिसमें कि दो सिंगापुर के भी लोगों को एक बार के लिए identify किया गया था, but now of course they've been tested negative on that regard. Passengers जिनके symptoms नहीं हैं, उनको repatriate किया जा रहा है for self-quarantine via specially arranged transport, not regular commercial flights, by their respective countries. ये कहा European Centre for Disease Prevention and Control ने इसी वीकेंड पर. कंट्रीज वर प्रिपेयरिंग टू इवैक्यूएट देयर सिटीजंस फ्रॉम द एमवी हॉन्डियस व्हिच इज द शिप फ्रॉम अराउंड 6:30 AM टू 7 AM GMT. जी हाँ, 10th ऑफ मे, दैट इज यस्टरडे. 8 लोग, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इंक्लूडिंग 3 जिनकी मौत हो गई थी, अ डच कपल एंड अ जर्मन नेशनल. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड इसी वीकेंड पर 6 ऑफ द 8 आर कंफर्म टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस विद अनदर 2 सस्पेक्टेड केसेस. All the passengers will be considered high risk at disembarkation. ये कहा ECDC ने पहले ही, लेकिन सबको necessarily high risk नहीं tag किया जाएगा, and they will be tested, and of course only after that action will be taken. It just sounds extremely scary because इस time पर कहा जा रहा है कि कोई इलाज भी नहीं है हंटा वायरस का. But well, the good news is that we do not have any such challenge in Singapore, and everyone has to take care. Okay. गुलो मिलो, लेकिन ध्यान से. अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7, आई विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक विद सम बॉलीवुड की खबर. स्टे ट्यून्ड.
1: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग द वर्ल्ड बॉलीवुड एंटरटेन्ड एनी टाइम एनीवेयर.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

हर प्रोफेशन में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो कि उसमें घुसने के बाद ही पता लगती है, बाहर से बातें बड़ी अलग लगती हैं, राइट? वी हैड एक्ट्रेसेस लाइक प्रियंका चोपड़ा, जोनस, लाइक कंगना रनौत एंड अ लॉट अदर्स टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ पेमेंट. जी हाँ, इनकम डिस्पैरिटी क्यों है और वो बात हो रही है इवन बॉलीवुड में. वेल, देयर्स सम अपडेट अबाउट दैट कि लेटेस्ट कौन सी ऐसी एक्टर है जो कि इस बारे में बहुत ही वोकल होकर बात कर रही हैं. मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7. न्यूज, व्यूज एंड अ पिंच मस्ती. बात कर रहे हैं हम कृति सैनन की. जी हाँ, ट्रेल ब्लेजर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंडीड. नेशनल अवार्ड विनर है कृति सैनन और हाल ही में एड्रेस कर रही थी द लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट ऑन पे पैरिटी इन द इंडस्ट्री. उन्होंने ये कहा कि स्ट्रगल तो है, पैसों के अराउंड स्ट्रगल तो है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं जब उनको कॉर्नर्स कट करने होते हैं ना, दे ऑफन नेगोशिएट डाउन द फीमेल लीड्स फीस. ऑफन जब लार्ज चंक ऑफ द बजट जो होता है वो मेल एक्टर की तरफ जाता है, लेकिन फिर भी फीमेल्स को जेंडर बायस और पेट्रियार्की इन बॉलीवुड की वजह से अपने पैसे और कम करने पड़ते हैं. दिस इज डीपली इंग्रेन्ड इन द इंडस्ट्री एंड हम जितनी भी बात करें, हम इक्वालिटी की तरफ बढ़े नहीं बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, सबकॉन्शियस तो कुछ ऐसा ही है कि भाई फीमेल लीड के पैसे और कम कर दो. वेल, शी सेज छोटी छोटी बातें लाइक अ मेल कोस्टार जो इतना सीनियर भी नहीं था उसको भी बेटर कार मिलती है, एंड वाजंट अबाउट द कार, इट्स अबाउट द रिस्पेक्ट. जी हाँ, आपका जो वैन होता है, जो वैनिटी होता है, वो किस तरह से दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश किया जाता है. शी सेज इट इज द बायस इज डेफिनेटली देयर. ऑन रेडियो मस्ती गाइस, आई गॉट टेल यू दैट कृति सैनन इज राइट नाउ बीइंग अ प्रोड्यूसर एंड लीडिंग हर स्किन केयर ब्रांड. जी हाँ, एंड शी इज also busy dominating the screen, absolutely. अभी हम Cocktail 2 में उनको देखने वाले हैं. जी हाँ, जिसमें कि शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी देखेंगे, और जून 19th को ये वाली फिल्म रिलीज होने जा रही है. I totally agree, चार शनिवार होने चाहिए, because शनिवार is the only time we party, right? Good morning.

पीयूबी ने कहा अपने फेसबुक पोस्ट पे, जो कि सुबह 9:45 कल के दिन में किया गया था। आई डिप्लॉयड अ सर्विस क्रू टू आइसोलेट द लीक एंड रिपेयर्स वर ऑन गोइंग ऑफ कोर्स टिल द एंड ऑफ द डे। कोई डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ वाटर सप्लाई को फॉर होम्स एंड बिजनेसेस इन द एरिया। और जो पीयूबी था वो काम कर रहा था विद नीसून टाउन काउंसिल टू कैरी आउट क्लीन अप वर्क्स एंड इन्वेस्टिगेट भी कर रहा था द कॉज ऑफ द लीक। कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्टर फॉर नेशनल सिक्योरिटी के शनमुगम, हु इज ऑल्सो एन एमपी फॉर नीसून जीआरसी, उन्होंने रिपोर्टर्स को यह बताया कि 25 दुकानें इम्पैक्ट हुई थी एंड द ऑफिसर्स फ्रॉम द टाउन काउंसिल हैड बीन इन दैट एरिया 2 बजे से लेकर ऑफकोर्स सुबह तक। ऑन रेडियो मस्ती फिलहाल के लिए तो यही खबर है कि वहां पर सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको अगर कोई और खबर मिल रही है तो हमें जरूर बताएगा। जी हाँ, और मैं मिलूंगी आपको अगले घंटे सौदेबाजी करते हुए इस बात की कि आप कहीं नहीं जाएंगे 10 बजे तक। मीटिंग है यार, सुबह मंडे को ईमेल शीमेल चेक करो, थोड़ी कॉल वॉल अपनी करो इधर उधर, स्लोली गेट योर कॉफी, गेट इनटू द जोन एंड मेक श्योर दैट यू मेक इट अ प्रोडक्टिव वीक अहेड। गुड मॉर्निंग।

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
0: And it's about 8:01, जी हाँ, on Radio Musti 24/7 चल रहा है हमारा शो जिसका नाम है The Morning Show. And my name is Renuka. I have been with you since 7 in the morning. And for all those people joining right now, good morning. Monday Coffee का best partner, The Morning Show on Radio Musti 24/7. News, views and a pinch. All right, let's take a look at what is happening in Strait of Hormuz. और वहां से क्या खबर आई है? एक हफ्ता पहले सोल ने रिपोर्ट करा था ब्लास्ट एंड फायर अबोर्ड द वेसल द HMM, जी हाँ, जो उनकी अपनी शिप है, इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जब वो एंकर हुई थी नियर द UAE. कोई भी उस ब्लास्ट में हर्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल के लिए ये पता लग रहा है दैट द स्टर्न ऑफ दिस बल्क कैरियर ऑपरेटेड बाय साउथ कोरियन शिपर HMM, इसको कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट से हिट किया गया था व्हाइल इट वाज स्ट्रैंडेड ओवर देयर. वेल, कल ही के दिन में ये खबर आई. पिछले हफ्ते जब ये बात हुई थी तो US President Donald Trump ने ये कहा था दैट द इंसिडेंट वॉज कॉज्ड बाय एन इरानियन अटैक एंड सोल वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट. और उस समय वेसल को टो करके लेकर गए थे दुबई के पोर्ट पर. एंड आफ्टर दैट ऑफकोर्स बात नहीं समझ में आई थी कि वॉट रियली हिट. लेकिन उस ऑब्जेक्ट के बारे में अब इस टाइम जब डेबरी देखा गया, पूरा साइट को एनालाइज किया गया, तो ट्रंप ने अर्ज किया है साउथ कोरिया को टू जॉइन अ करंटली सस्पेंडेड US लेड एफर्ट डब्ड प्रोजेक्ट फ्रीडम टू सिक्योर शिपिंग थ्रू द स्ट्रेट फॉलोइंग द इंसिडेंट. ईरान की एम्बेसी ने साउथ कोरिया में जो है उन्होंने डिनाई करी है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक. दे सेड दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड वी हैव नॉट हर्ड ऑफ एनी सच अटैक डन फ्रॉम ईरान. वेल, देखने बात यह है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं इस टाइम पर भी, क्या ये सीज फायर सच में लागू हुआ है या नहीं? Let's take a short musical break here, guys. And I'll be back with some more news right up across this one. Yeah, good morning. And once again, welcome to Radio Musti 24/7.